0: पारौ।
1: कौरव पांडव को बीच में तेत्रा सही भाई जाजल एवटे विष्णु सारा ले दिग्विजय कर सकते तस्ता थे तर भगवान सारा थे अर्जुन को दाइना भर भगवान रहने।

0: या ल अब चाहिँ ए बाट गुनगुनाउनु पर्छ है तपाईले
1: हजुर ए या ई हुन्छ नि त
0: हजुर ए या ई ऊ ए आई अम आ
1: ए या ई

0: ब्रो
1: कहिले
0: मिल्दैछ कि ब्रो
2: राम्रोसँग ल मिलाइदिए
0: राम्रोसँग ल गाइदिए
2: साँच्चै
0: मुच्चै

0: This is Radio Dhor Barahi, 103.8 MHz.
1: Station 1. Studio Talchen.
2: Aile, Diuso ko ek bajyo.
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु का साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98160 95301।
4: Camera is standby. Reload music.
5: नेपाली चलचित्रका गीत संगीतहरू

0: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्ज।
1: स्टुडियो टाइम अहिले दिउँसोको 4 बज्यो। टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापावाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु का साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301।

0: connect your dream, connect your future, still connect your heart.
1: Connect Australian Education and Visa Services. शुक्ला गण्डकी चार तुलेगौड़ा वाक इन डिपार्टमेंट भवन संगे मोबाइल 98562340 93 और 98562380